0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई बने थी तो सुबह 11 बजे खां शाम 4 बजे तई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, ऐ उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन, बुजुर्गन ऐ बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो ऐ महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन सा पेश कयो वयो।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वगे खां शाम 6 वगे ताईं, परोस जुमो 12 वगे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 बजे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मी खां बचाओ तव्हां जे एहतियात।
6: कश्मीर जे ब्यूटी पार्लर में नारी ऐं नौजवान ज़ख्मी हालत में अचण वारो मामलो ॼाण ॾियो। नओं रुख इख़्तियार करे वियो। ब्यूटी पार्लर हलाईंदड़ नारी जो नौजवान ते हिरासत करण जो इल्ज़ाम। अवाम जे पुलिस इल्ज़ाम हेठि आयल जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करण बदिरां नारी जे भाउ खे लाकअप करे छॾियो। ॿ ॾींहं अॻु विद्या कुमारी मारवाड़ी ऐं जहांज़ेब उर्फ़ अरबास जकाणी ब्यूटी पार्लर में दाखिल थी, हिरासा कयो। मूंखां मोबाइल फोन ऐं चाबियूं खसण जी कोशिश कई। इनकार ते मूंखे पेट में कात हणी ज़ख़्मी कयो। ॿिए पासे इल्ज़ाम हेठि आयल जहांज़ेब जखाणी जे वासनि जो चवणु आहे त असांजे नौजवान खे घुराए नारी जे भाउ बालम ऐं प्रकाश छुरी सां गलो कपे छॾियो आहे। नौजवान खे घटिती जोगी हालत में रहीम यार खान इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पुलिस नारी जे भाउ बालम खे लाकअप करे छॾियो। चोर जमाली वेझो ॿिनि धुरनि में मामूली ॻाल्हि आहे। जहिड़े दौरान नौजवान क़तल, 20 ॼणा ज़ख़्मी। घोट लीमू मला में मला बरादरी जे ॿिनि धुरनि में जहिड़े दौरान कुहाड़ियूं ऐं लठूं लॻण सबबि पटरी वरण जो मुसफ़र क़तल थी पियो। औरत ऐं ॿारनि समेत 20 ॼणा ज़ख़्मी। इस्पताल मुंतकिल, 5 ज़ख़्मी जी हालत गंभीर जोगी ॿुधाई पई वञे।
7: उस शख़्स की तरह हो सकता है का मन मानिन उसके जो मसलु हो कि मिसाल उसकी ज़ुलुमा। فرماتی ہے
8: خوبصورت بنا دیے گئے دل کافروں کے
9: لیے
8: کچھ وہ عمل کرتے یہاں پر مردہ سے انسان کافر ایمان سے خالی موت سے مراد کفر جہالت
6: پنو عقل بسا اگوا جان لنگری سبا کروڑ جو ڈیڑھ مہینوں گزرن باوجود پتو نہ پجی سکیو سندس امر روئی روئی حال ونیا چھڈیا 13 ورن جی نگری جی بازیابی لائے واسن جو احتجاج واسن چ تہ نگری سال ہانے کھا پنو عقل سٹی ویندے اگوا تھی ہوئی انیا تائی بازیاب نہ تھی پولیس بھی کو قدم نہ تھی کھنے
7: عوامن
10: سولر اے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست تھا رائل انورٹر فین ساتھ زندگی بھر کا
7: یہ زندگی کیا ہے ایمان
11: ہائبرڈ رائس
7: اور علم
11: کسان کی امید
7: وجعلنا له نورا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا
12: جی ہاں
7: یہ نور کون سا ہے اسلام کا یمشی بہ فی الناس وہ اس نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لوگوں کے اندر یعنی اسلام کی حالت میں زندہ ہے ایک انسان کی زندگی میں کیا کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں ان کا ذکر ہے ایک ایسے انسان یا کردار کی بات ہے کہ جو
12: فون
7: دین سے بے بہرہ
12: ایل ای ڈی ٹی ویز الیکٹرونک
7: آئی جات سے نا آشنا آئیں

0: मुल्क का बाशिंदा है।
1: हाणे सजनों मेलो,
2: उसका नाम क्या?
1: शहर हैदराबाद।
0: उसकी उम्र क्या? उसकी तालीम क्या? तो कौन है, कहाँ है? हमें फायदा नहीं होगा। वो शख्स जो मुर्दा था, मुर्दा कौन?
3: कोई मुर्दा कब होता है?
0: मरता कब है?
3: मजबूत तने, लंबे,
0: दिल मुर्दा।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।
3: पहचो शहर, पहचो घर, सकरण। आई सकरण जो आवाज
4: GFM 90.8।

0: अमेरिक सदर डोनाल्ड ट्रंप समूरन मुसलमान मुल्कन का इब्राहिमी मुहिदे में शामिल थियण जो मुतालबो करे छो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त इब्राहिमी मुहिदे ते सही जी शुरुआत सऊदी अरब ऐं कतर खां थियण घुर्जे, बाद में ॿिया मुसलमान मुल्क बि लाज़मी तौर मुहिदे ते सहियूं कनि। ईरान जी अमरीका सां मुहिदे बाद इब्राहिमी मुहिदे में शमूलियत एज़ाज़ हूंदी। तेहरान सां मुहिदो न थियो त पहिरियां खां वॾी ऐं ताक़तवर जंग थींदी। मौजूदा सूरत हाल ते पाकिस्तान जे फील्ड मार्शल सऊदी वली अहद, कतरी अमीर, यूएई जे सदर ऐं मिस्री सरबराह सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे। तेहरान सां मुहिदे लाइ पुरउमीद आहियूं। दौरे ते दुआ पोतल ईरानी वफ़द जे कतरी वज़ीर आदम ऐं ॿियनि इदारनि सां अहम मुलाकात, मंझंदि असासनि जी बहाली ऐं आबनाए हुमस ते ॻाल्हि ॿोल्हि। मोहम्मद बाकर कालीबाब जी क़यादत में परे वज़ीर अब्बास एराकजी ऐं ॿियनि कतरी इदारनि सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ातनि दौरान ईरानी सरकारी बैंक जो गवर्नर बि मौजूदु हो। ईरान अमरीका सां जंग जे ख़ात्मे लाइ शुरूआती फ्रेम वर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी पदे वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती एमओयू ते पहुचण जो मक़सदु ईरान ऐं अमरीका में मुहिदे जे वेझो पहुचण न आहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो न आहे। आबनाए हुर्मुज़ वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे। फ्रेम वर्क में हुर्मुज़ बाबति घणो ज़िक्र न आहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
3: हैरतअंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज़, मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
5: जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा, हर गोशा
6: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।